मिर्जापुर को पहले सिनेमा हॉल की जरूरत नहीं थी, उसने अपना एम्पायर लोगों के लिविंग रूम्स में बनाया था। लेकिन जब वही दुनिया थिएटर में पहुंची तो ऑडियंस ने बिना किसी हिचकिचाहट के टिकट काउंटर पर लाइन लगा दी। इंडियन एंटरटेनमेंट में पहले सिनेमा से एक्टर्स टीवी पे जाते थे और फिर ओटीटी पर, लेकिन मिर्जापुर ने फ्लो ही उल्टा कर दिया। डिजिटल स्क्रीन्स पर जन्म लेने वाली दुनिया ने मल्टीप्लेक्सेस को ही कैप्चर कर लिया, क्योंकि कालीन भैया और गुड्डू पंडित अब कैरेक्टर्स नहीं रहे, ऑडियंस का पर्सनल रिलेशनशिप बन चुके हैं। ये सिर्फ हमें बताता है कि आने वाले वक्त में सिनेमा का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होगा कि फिल्म का बजट कितना है, सवाल ये होगा इस दुनिया के फैंस कितने कमिटेड हैं। जैसे आवारापन के फैंस कितने कमिटेड थे कि इमरान हाशमी को फिर से अपने सर आंखों पर बिठा लिया। एंड एक ऐसी ही बिल्कुल नई स्टाइलिश दुनिया से इसके बाद वाला गाना है, विच इज ऑन नंबर 8, अमित त्रिवेदी की म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर वाली डबल एनर्जी। दिस इज फ्रॉम कुणाल खेमू की आने वाली फिल्म वाइब, रातों में आना। नंबर

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 मिर्ची इट्स हॉट के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 7

0: बिग बजट स्पेक्टिकल फिल्म्स और इमोशनल ह्यूमन सिनेमा में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। स्पेक्टिकल फिल्म्स के पास स्केल होता है, VFX होता है, लेकिन इमोशनल सिनेमा के पास ऑडियंस की मेमोरी की करेंसी होती है। आवारा पंटू के साथ वही इमोशनल करेंसी जुड़ी हुई है और इस फिल्म के म्यूजिक के पीछे दो भाइयों की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है, अमाल एंड अरमान मलिक। जब ये आवारापन कंपोज हो रहा था तब सबको लगा होगा कि अमाल ये गाना अपने भाई अरमान से गवाएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल दोनों भाई हिंदी फिल्म म्यूजिक से काफी टाइम से दूर थे। लेकिन अमाल ने अरमान को नहीं चुना, उन्होंने अरिजीत सिंह को चुना और इसके पीछे भी एक काफी सॉलिड रीजन है।
1: अगर मेरे को पता है कि ये गाना अरमान भी गा सकता है या उन दोनों के अलावा मैं भी गा सकता हूँ, बट सबको एक चॉइस होनी चाहिए। मैं अरमान को भी 5-6 गाने भेजता हूँ, उसमें उसको फोर्स नहीं करता कि हर गाना गाते। There have been songs like चल वहाँ जाते एंड सोचना सके जो अरमान ने गाए एंड उसको हटा के हमने अरिजीत को लिया है। And there is a bass abriya from MS Dhoni जो अरिजीत ने गाया है, वो हट के अरमान ने बाद में गाया। So these are creative calls और मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है मेरे सिंगर्स के साथ कि मैं सबको इन्फॉर्म्ड भी रखता हूँ कि ये गाना शायद ये सिंगर से भी हम ट्राई करेंगे।
0: ये एक सच्चे म्यूजिशियन की पहचान है, अपने भाई से प्यार करना एक बात है लेकिन गाने की आत्मा के साथ ऑनेस्टी दिखाना दूसरी बात। अमाल ने भाई से ज्यादा गाने की सुनी और इस गाने की किस्मत देखिए, अरिजीत ने इस गाने के लिए अपनी टेम्पररी सिंगिंग रिटायरमेंट को तोड़ दिया और अमाल ने इस ट्रैक के बाद म्यूजिक से पॉज ले लिया। दोनों थक कर रुक गए लेकिन गाना आगे निकल गया। उन लोगों के लिए जिन्होंने इमरान हाशमी के गानों को सिर्फ सुना नहीं है, अपनी जवानी में जिया है, एट नंबर 5 इज ये आवारापन। नंबर 5

Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot. Number 4.

0: इतने हफ्तों से गहरा हुआ का नंबर 3 पर बने रहना इस बात का प्रमाण है कि धुरंधर ने रणवीर सिंह के करियर को दो हिस्सों में बांट दिया है, बिफोर धुरंधर एंड आफ्टर धुरंधर। और रणवीर की इस जर्नी को देखकर मुझे 2011 का रणबीर कपूर याद आता है। रॉकस्टार से पहले रणबीर एक बहुत ही प्रॉमिसिंग यंग स्टार थे, लेकिन इम्तियाज अली की उस फिल्म ने रणबीर के अंदर की सारी बेड़ियां तोड़ दी। नाउ मजेदार बात यह है कि इम्तियाज अली ने जब रॉकस्टार लिखी थी, ओरिजिनली उनके दिमाग में रणबीर थे ही नहीं।
1: रणबीर कपूर को फिल्म में लेने का कोई सवाल नहीं उठता था जब मैंने रॉकस्टार लिखी थी। पहले मैं जॉन इब्राहिम के साथ वो फिल्म बनाने वाला था। एक्चुअली जब मैंने मूवी लिखी, रणबीर कपूर एक्टिंग नहीं कर रहे थे। सोचा ना था कि बनने में 4 साल लग गए थे, और उसमें मुझे अपने आप को पागलपन से बचाने के लिए कुछ रेलेवेंट काम करना बहुत जरूरी था। तो इस चक्कर में मैं स्क्रिप्ट्स लिखा करता था, उसमें से एक स्क्रिप्ट थी रॉकस्टार। मेट रणबीर अ कपल ऑफ टाइम्स, फिर हम लोग दोनों ने फैसला किया कि हम कुछ साथ में बनाएं। उसके बाद फिर मैं उनके घर गया एक कहानी सुनाने के लिए, तो उसने कहा कि अच्छा आपकी मैंने एक कहानी सुनी है, तो उस कहानी में एक रॉकस्टार होता है। फिर उसने मुझे नरेट किया, दिस इज अ यूनिक नरेशन वेयर आई वेंट टू मीट एन एक्टर एंड द एक्टर नरेटेड द स्टोरी टू मी।
0: जॉन इब्राहिम से शुरू हुई स्क्रिप्ट जब 24 साल के रणबीर तक पहुंची तो एक डायरेक्टर को अपना जॉर्डन मिल गया। जॉर्डन को हीरो नहीं था वैसे, वो गुस्से, वल्नरेबिलिटी और सेल्फ डिस्ट्रक्शन का एक तूफान था। रणबीर ने जॉर्डन को एक्टिंग से नहीं अपनी रगों से जिया था। उस दिन के बाद इंडस्ट्री ने रणबीर से पूछना बंद कर दिया कि आप क्या कर सकते हो, और देखना शुरू कर दिया कि आप कितना दूर जा सकते हो। टुडेस पिक ऑफ द वीक इज द ट्रैक दैट चेंज रणबीर्स डेस्टिनी फॉरएवर फ्रॉम रॉकस्टार। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स बाय मोहित चौहान एंड एआर रहमान एंड इरशाद कामिल। इस गाने का नाम है जस्ट लाइक द फिल्म। जो भी मैं कहना चाहूं पर बात करे अल्फाज मेरे।
2: Pick of the week.

नंबर दो पर चुनरी चुनरी का चढ़ना एक मैडनेस है यार। रिलीज के इतने महीनों बाद भी ये गाना रुकने को तैयार ही नहीं है। लेकिन नंबर वन पर जो गाना बैठा हुआ है काफी कंफर्टेबली, उसके साथ मेरा एक बहुत पर्सनल कनेक्शन है। मैं कोई क्लासिकल म्यूजिशियन नहीं हूँ, मुझे म्यूजिक की टेक्निकलिटी समझ नहीं आती है, कंपोजिशन के अंदर क्या क्या जाता है आई डोंट नो। लेकिन हाल ही में मैंने तेरा मेरा रिश्ता का एक अलग ही वर्जन सुन लिया, एक सूफी कव्वाली वर्जन, नियाजी निजामी भाइयों की आवाज में।

फिल्म का ओरिजिनल वर्जन एक अकेले टूटे हुए आदमी की खामोश दुआ है, जैसे रात के सन्नाटे में कोई खुदा से अकेले में कुछ पूछ रहा हो। लेकिन कव्वाली वर्जन में वही दर्द एक महफिल का हिस्सा बन जाता है। हारमोनियम की गहरी सुरीली पत्ती के ऊपर जब तालियां और कोरस जुड़ता है तो लगता है जैसे एक इंसान की तन्हा पुकार को पूरी महफिल ने अपनी आवाज दे दी हो। सिंगल वॉइस अंदर खींचती है, कव्वाली उस दर्द को बांट लेती है, और शायद यही पहचान होती है ऑफ दीज ग्रेट सॉन्ग्स। सिंगर्स बदल जाएं, अरेंजमेंट बदल जाए, जमाना बदल जाए, लेकिन जज्बात वो कभी नहीं बदलते। 19 साल बाद भी ये गाना किसी एक फिल्म का नहीं, हर टूटे और जुड़े दिल का है। स्टिल रेनिंग एट नंबर 1, दिस इज तेरा मेरा रिश्ता, एक ऐसा रिश्ता जो है 19 साल पुराना।

कुछ गाने चार्ट से निकल जाते हैं लेकिन हमारी मेमोरी से कभी नहीं निकलते, इसलिए हम बार बार उनके पास खींचे चले आते हैं, हर बार अपने अंदर का एक नया पन्ना पढ़ने के लिए। अगर इस बार के मिर्ची टॉप 20 में आपको अपनी कोई पुरानी याद, कोई अधूरी बात या कोई नया एहसास मिला हो तो समझ लेना कि हमारा सफर पूरा हो गया है। So until the next time I meet you here on the Mirchi Top 20, this is Suren, over and out. Suren ke saath, only on Mirchi, it's hot.

Mirchi, it's hot.

0: भोजन अच्छी लगी होगी। मेरा नाम है भजन कुमार, फॉलो मी ऑन माई चैनल।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, मिर्ची।

0: Mirchi, it's hot.
1: Yeah. I like the way you move right there.

0: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।
1: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Bye.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, बंदी का नाम है आरजे कनिका एंड इट्स टाइम फॉर द हॉटेस्ट काउंटडाउन ऑफ द वीक, यानी ये गाना इंडी टॉप 10, जहां पर हम हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों की गिनती आपके लिए करते हैं। इस हफ्ते के टॉप 10 गानों में एक नई एंट्री है। काउंटडाउन के साथ साथ हमारा 90s 2000s का आइकॉनिक इंडी पॉप क्लासिक आपके लिए लाएंगे। सम स्पेशल शाउट आउट्स आपके फेवरेट आर्टिस्ट से बातें, ऑल दिस एंड मोर एट आरजे कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर आके स्टे कनेक्टेड विद मी। कोई गाना रेकमेंड करना है, कोई बातें शेयर करनी हो, बिंदास आके हिट मी अप। शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते के काउंटडाउन की विद गाना नंबर 10। शुरुआत ही एक नई एंट्री के साथ हो रही है। गाने का नाम है वो आएगा, ऑपरेशन सफेद सागर का है ये गाना। अनुराग साइकिया की कॉम्पोजिशन, राज शेखर के लिरिक्स, राघव चैतन्य की आवाज में वो आएगा डेब्यूज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद संजू राठौड़ का बैंगल्स 14 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 10।

0: कूल इंटरनेट स्लैंग्स आपको संजू राठौर के गाने में मिल जाएंगे. भले ही आपको मराठी समझ आए ना आए, बैंगल्स पे यू विल ग्रूव. दैट्स द मैजिक ऑफ संजू एंड हिज प्रोड्यूसर जी स्पार्क. 14 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. दिस वाज बैंगल्स ऑन गाना नंबर 9.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची.
0: मिर्ची पर दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक. असली कहानियों से गाने बनते हैं, गानों से असली कहानियां इंस्पायर होती हैं. काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है ना, वो ऐसे ही एक कश्मकश में लाके खड़ा कर देता है. एक चिड़िया के बारे में सोचो जो एक पिंजरे में बंद है. वो जब से इस पिंजरे में है, वो चाहती है कि वो इस पिंजरे को तोड़ के बाहर निकल जाए आसमान में, उस आसमान में जहां वो बिलोंग करती है. और उसी आसमान से उसे डर भी लगता है. नाउ आप कंफ्यूज मत हो कि ऐसा कैसे कि वो आसमान में जाना चाहती है लेकिन फिर भी उसे डर लगता है. रियलिटी तब हिट करती है व्हेन वी रियलाइज दैट ये बात तो सिर्फ परिंदे की है ही नहीं, ये तो मेरी आपकी भी बात है. हम सबके अंदर कहीं ना कोई एक अंदर एक छोटी दबी हुई विश है, राइट? एक चुल होगी या कोई आर्टिस्ट है हमारे अंदर छुपा हुआ. कोई लिखना चाहता है, कोई गाना चाहता है, किसी के अंदर एक फिल्म की कहानी है, एक पेंटिंग है, या मे बी आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है. और हमने क्या किया, उन सब विशेष को लेके एक अलमारी के अंदर बंद कर दिया. बोला कि अभी नहीं, अभी टाइम नहीं है, अभी पहले इस पे फोकस कर लेते हैं, जिंदगी बना लेते हैं, नौकरी ले लेते हैं, कॉलेज पूरा कर लेते हैं. और वो जो हमारे अंदर की इच्छा थी, वो क्रिएटिव विश, वो रोज करते करते थोड़ी थोड़ी मर गई. नाउ जस्ट इमेजिन एक दिन यूनिवर्स आपकी वो सारी विशेस मान ले. कल सुबह आपको परमिशन मिल गई कि आप जो करना चाहते हो जाएगा. आसमान खुला आपके सामने है, आप क्या करोगे? ये जवाब मुझे मत दो, खुद सोचो कि क्या आप वो कदम ले लोगे या फिर उल्टी होके अलमारी में बैठ जाओगे. क्योंकि जो कंफर्टेबल दुनिया हमने बना ली है, इसकी अब आदत हो गई है. ये सर्कमस्टेंसेस ही बस रियल लगने लगते हैं कि क्या हमें ये पिंजरा इतना अच्छा लगने लग गया कि वो कदम बाहर निकालना कैसे है, अब हमें उससे ही डर लगता है. काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है ना, वो बिल्कुल इसी कश्मकश के बीच में है. लखनऊ के आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट का नाम है फरक. उन्होंने ही एक गाना लिखा है, उन्हीं की कॉम्पोजिशन है. आई एम श्योर आपने सोशल मीडिया पे ये गाना जरूर सुना होगा, लेकिन अब इस मतलब के साथ सुनना. गाने का नाम है तारे. 6 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. पिछले हफ्ते से एक पोजिशन नीचे ड्रॉप होके तारे बाय फरक इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 8.

0: लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है।
1: गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है।

रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 98.3 98.3 मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 7

0: मेरी बंजारे दी आर्टिस्ट का गाना तीन हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से तीन पोजीशन ऊपर जंप मार के बरसात इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, हैंडल इज @RJKanika। फॉलो करना बिल्कुल फ्री है। कोई गाना रिकमेंड करना है, बातें करनी हो, बिंदास आके हिट मी अप। कुछ गाने हमें हैप्पी फील कराते हैं, कुछ सैड फील कराते हैं, कुछ ट्रैवल करने की चुल जगा देते हैं, एंड कुछ गाने प्योरली हमको एक नॉस्टैल्जिक ट्रिप पे लेके चले जाते हैं। एंड अगले वाला गाना इज ऑल अबाउट दैट नॉस्टैल्जिया। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज एंड द सॉन्ग वी आर गोइंग टू फीचर दिस वीक इज
2: मेरी नींद उड़ गई है, मेरा चैन खो गया है, तेरे प्यार में मेरी जान ये क्या हो गया है।
0: गाने का नाम है मेरी नींद उड़ गई है बाय अ बैंड ऑफ बॉयज। साल 2002 में ये गाना आया था उनकी एल्बम ये भी वो भी से। आज सुबह जब मैं शो की तैयारी कर रही थी तो ये गाना सुन रही थी। आई वॉन्ट टू प्ले दिस सॉन्ग फॉर यू बिकॉज बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया है। एंड मेरा एक दोस्त साइड में बैठा हुआ था, वो अपना काम कर रहा था एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था। एकदम बीच में उठता है एंड बोलता है कि यार ये गाना सुनते ही ना मेरा एकदम स्ट्रेस चला गया, एनर्जी आ गई मेरे अंदर। एंड आई आस्क्ड हिम दैट व्हाई, व्हाट मेड यू फील लाइक दिस, एंड ही सेड बस नॉस्टैल्जिक लगा। एंड आई एग्जैक्टली अंडरस्टूड वो क्या कहना चाह रहा था। ये गाना उसको एक सिंपलर टाइम्स में लेके चला गया, 2002 का वो वक्त जब प्यार होना, क्रश होना, किसी को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना बहुत ही सिंपल था। कोई सीन नहीं था, कोई ब्लू टिक का प्रेशर नहीं था। ये नहीं था कि यार ये मुझे रिप्लाई तो कर नहीं रहा है या रिप्लाई तो कर नहीं रहा लेकिन इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल रही है। बस किसी का ख्याल है, एक तरफा दिमाग में इमेजिनेशंस चल रही हैं, उतना ही है और वही काफी था। एंड इस गाने में पूरी वही वाली फीलिंग्स हैं, मेरी नींद उड़ गई, मेरा होश खो गया। दैट्स एग्जैक्टली हाउ अ क्रश मेक्स यू फील। एंड अगर आप किसी के क्रश हो देन दिस इज लाइक द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट एवर। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। साल 2002 का गाना है बट इट साउंड्स लाइक फ्रेश फ्रॉम द ओवन। वो लेस्ली लुईस की खासियत है, अ बैंड ऑफ बॉयज का गाना। दिस इज मेरी नींद उड़ गई है ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बनी का नाम है कनिका। एंजॉय।

Dude, this song is like a time capsule. I swear it takes me back to those simpler times. Gaane Ganaave Meri Neend Ud Gayi Hai by A Band of Boys. That was on our cassette classic this week. At RJ Kanega on Instagram par aao. Main aur mera producer Ashkai, hum aapke cassette classic ke recommendations ko bahut seriously lete hain. We might feature your song next week. Now quickly is indie pop quiz ka answer karo. A Band of Boys ka ek gaana hai. मैं पहली लाइन गा रही हूँ, दूसरी लाइन आपको मुझे एट आरजे कनेगा और इंस्टाग्राम पर आके बतानी है क्या है. तेरे नैन कटारी मेरी राम डैश एट आरजे कनेगा पर आके मुझे बताओ. नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी. इट्स अटली बटली ब्यूटिफुली रोमांटिक सॉन्ग. राघव कौशिक रेखा भारद्वाज की आवाज, अमृता सलूजा के लिरिक्स, राघव कौशिक का म्यूजिक. इट्स फ्रॉम मुसाफिर कैफे. गाने का नाम है दरमिया. पिछले हफ्ते से 5 पोजीशन नीचे ड्रॉप हुआ है दरमिया दिस वीक ऑन गाना नंबर 6. उसके बाद बादशाह हितेन शर्वी यादव का बैंगर इज ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

0: Mirchi. It's hot. Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
1: Number 4.

0: इतने हफ्तों से गहरा हुआ का नंबर 3 पर बने रहना इस बात का प्रमाण है कि धुरंधर ने रणवीर सिंह के करियर को दो हिस्सों में बांट दिया है, बिफोर धुरंधर एंड आफ्टर धुरंधर। और रणवीर की इस जर्नी को देखकर मुझे 2011 का रणबीर कपूर याद आता है। रॉकस्टार से पहले रणबीर एक बहुत ही प्रॉमिसिंग यंग स्टार थे, लेकिन इम्तियाज अली की उस फिल्म ने रणबीर के अंदर की सारी बेड़ियां तोड़ दी। नाउ मजेदार बात यह है कि इम्तियाज अली ने जब रॉकस्टार लिखी थी, ओरिजिनली उनके दिमाग में रणबीर थे ही नहीं।
1: रणबीर कपूर को फिल्म में लेने का कोई सवाल नहीं उठता था जब मैंने रॉकस्टार लिखी थी। पहले मैं जॉन इब्राहिम के साथ वो फिल्म बनाने वाला था। एक्चुअली जब मैंने मूवी लिखी, रणबीर कपूर एक्टिंग नहीं कर रहे थे। सोचा ना था कि बनने में 4 साल लग गए थे, और उसमें मुझे अपने आप को पागलपन से बचाने के लिए कुछ रेलेवेंट काम करना बहुत जरूरी था। तो इस चक्कर में मैं स्क्रिप्ट्स लिखा करता था, उसमें से एक स्क्रिप्ट थी रॉकस्टार। मेट रणबीर अ कपल ऑफ टाइम्स, फिर हम लोग दोनों ने फैसला किया कि हम कुछ साथ में बनाएं। उसके बाद फिर मैं उनके घर गया एक कहानी सुनाने के लिए, तो उसने कहा कि अच्छा आपकी मैंने एक कहानी सुनी है, तो उस कहानी में एक रॉकस्टार होता है। फिर उसने मुझे नरेट किया, दिस इज अ यूनिक नरेशन वेयर आई वेंट टू मीट एन एक्टर एंड द एक्टर नरेटेड द स्टोरी टू मी।
0: जॉन इब्राहिम से शुरू हुई स्क्रिप्ट जब 24 साल के रणबीर तक पहुंची तो एक डायरेक्टर को अपना जॉर्डन मिल गया। जॉर्डन को हीरो नहीं था वैसे, वो गुस्से, वल्नरेबिलिटी और सेल्फ डिस्ट्रक्शन का एक तूफान था। रणबीर ने जॉर्डन को एक्टिंग से नहीं अपनी रगों से जिया था। उस फिल्म के बाद इंडस्ट्री ने रणबीर से पूछना बंद कर दिया कि आप क्या कर सकते हो, और देखना शुरू कर दिया कि आप कितना दूर जा सकते हो। टुडेस पिक ऑफ द वीक इज द ट्रैक दैट चेंज्ड रणबीर्स डेस्टिनी फॉरएवर फ्रॉम रॉकस्टार। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स बाय मोहित चौहान एंड ए आर रहमान एंड इरशाद कामिल। इस गाने का नाम है जस्ट लाइक द फिल्म। जो भी मैं कहना चाहूं पर बात करे अल्फाज मेरे।
2: Pick of the week.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: नंबर टू
3: अच्छा

नंबर दो पर चुनरी चुनरी का चढ़ना एक मैडनेस है यार। रिलीज के इतने महीनों बाद भी ये गाना रुकने को तैयार ही नहीं है। लेकिन नंबर वन पर जो गाना बैठा हुआ है काफी कंफर्टेबली, उसके साथ मेरा एक बहुत पर्सनल कनेक्शन है। मैं कोई क्लासिकल म्यूजिशियन नहीं हूँ, मुझे म्यूजिक की टेक्निकलिटी समझ नहीं आती है, कंपोजिशन के अंदर क्या क्या जाता है आई डोंट नो। लेकिन हाल ही में मैंने तेरा मेरा रिश्ता का एक अलग ही वर्जन सुन लिया, एक सूफी कव्वाली वर्जन, नियाजी निजामी भाइयों की आवाज में।

फिल्म का ओरिजिनल वर्जन एक अकेले टूटे हुए आदमी की खामोश दुआ है, जैसे रात के सन्नाटे में कोई खुदा से अकेले में कुछ पूछ रहा हो। लेकिन कव्वाली वर्जन में वही दर्द एक महफिल का हिस्सा बन जाता है। हारमोनियम की गहरी सुरीली पत्ती के ऊपर जब तालियां और कोरस जुड़ता है तो लगता है जैसे एक इंसान की तन्हा पुकार को पूरी महफिल ने अपनी आवाज दे दी हो। सिंगल वॉइस अंदर खींचती है, कव्वाली उस दर्द को बांट लेती है, और शायद यही पहचान होती है ऑफ दीज ग्रेट सॉन्ग्स। सिंगर्स बदल जाए, अरेंजमेंट बदल जाए, जमाना बदल जाए, लेकिन जज्बात वो कभी नहीं बदलते। 19 साल बाद भी ये गाना किसी एक फिल्म का नहीं, हर टूटे और जुड़े दिल का है। Still reigning at number one, this is तेरा मेरा रिश्ता, एक ऐसा रिश्ता जो है 19 साल पुराना। Number

0: कुछ गाने चार्ट से निकल जाते हैं लेकिन हमारी मेमोरी से कभी नहीं निकलते, इसलिए हम बार बार उनके पास खींचे चले आते हैं, हर बार अपने अंदर का एक नया पन्ना पढ़ने के लिए। अगर इस बार के मिर्ची टॉप 20 में आपको अपनी कोई पुरानी याद, कोई अधूरी बात या कोई नया एहसास मिला हो तो समझ लेना कि हमारा सफर पूरा हो गया है। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम आई मीट यू हियर ऑन द मिर्ची टॉप 20, दिस इज सिरेन, ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. It's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना, मुंह

Hey there, my mirchi people. मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में. Let's check your mirchi का weather आज. अभी फिलहाल 68 degrees Fahrenheit हो रहा है. Sky थोड़ा सा cloudy है, लेकिन feel हो रहा है 69 degrees Fahrenheit के आसपास. So technically weather कह रहा है मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा overreact करना पड़ेगा. सुबह 9 बजे तक partly cloudy रहने वाला है, लेकिन 9 बजे के बाद थोड़ी sunshine देखने को मिलेगी. And temperature का overall range आज रहेगा 60 से लेकर 75 degrees Fahrenheit के बीच में. और गुड न्यूज भी है मेरे पास. कल 14 मिलीमीटर्स की बरसात हुई, लेकिन अगले 24 आवर्स में प्रेसिपिटेशन है जीरो. सो अम्ब्रेला को आज छुट्टी दी जा सकती है. एक इंटरेस्टिंग बिट ये है कि आज का हाई टेम्परेचर कल से थोड़ा सा लो है. कल गया था 82 डिग्रीज फारेनहाइट तक टेम्परेचर, एंड आज जाने वाला है 75 डिग्रीज फारेनहाइट तक. तो स्वेटर अभी निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, एसी को थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट देने की जरूरत पड़ेगी आज. और वैसे आज गणेश चतुर्थी भी है, बप्पा का वेलकम किया गया है. तो चाहे तो मुझे किसी भी कोने से सुन रहे हो और दिल इंडिया में बसा हुआ है, बप्पा से बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीगन कम देना, सनशाइन ज्यादा देना, और मंडे को थोड़ा सा मैनेजेबल बना के रखना आज के दिन. और मुझे अभी वेदर की पिक्चर्स भेज सकते हो, जहां पर भी हो तुम वहां से मुझे टैग कर सकते हो. मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS. और व्हाट्सएप करना है तो 9033 मिर्ची इज माय नंबर. बड़ा ही इजी बिजी है, 9033647244. अभी सुनते रहो मुझे यानी कि प्रिसला को मिर्ची मॉर्निंग्स पर. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और ये है मिर्ची मॉर्निंग। चलो यार अब टाइम मशीन में चलकर देखते हैं आज का दिन क्यों खास था। 1814 में फ्रांसिस स्कॉट की ने डिफेंस ऑफ फोर्ट्स हेनरी नाम की पोएम लिखी थी जो बाद में US नेशनल एंथम द स्टार स्पैंगल्ड बैनर के लिरिक्स बने। फिर 1901 में थियोडोर रूजवेल्ट सिर्फ 42 साल की उम्र में US के यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने। 1949 में इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने देवनागरी स्क्रिप्ट में हिंदी को यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अडॉप्ट किया, इसीलिए आज हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। तो हिंदी लवर्स आज ग्रामर पुलिस को थोड़ा सा रिलैक्स कर दो, ओके? 1959 में सोवियत यूनियन का लूना 2 मून तक पहुंचने वाला पहला ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट बना। और साल 2000 आया, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज मी रिलीज किया। टेक्नोलॉजी ने कहा यार मैं भी हिस्ट्री बनाऊंगा। मैं वैसे प्रिसिला हूँ तुम्हारे साथ और हिस्ट्री नहीं अभी फ्यूचर की बात करते हैं। आने वाले कुछ मिर्चीदार बैंगर्स ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स और तुम जाने वाले हो इंस्टाग्राम और एक्स पर मुझे फॉलो करने के लिए। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिज, MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप से सीधा मैसेज भी कर सकते हो तो मुझे 9033 मिर्ची इज माई नंबर, यानी कि 9033647244। एंड फॉर ऑल दोस सेलिब्रेटिंग हैप्पी गणपति बप्पा का आगमन, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में मिर्ची मॉर्निंग्स इज ऑफिशियली ऑन। और आज का मूड है थोड़ा सा फेस्टिव, थोड़ा सा फिल्मी, लेकिन फुल ऑन मोदक पावर्ड, बिकॉज यस, इंडिया में आज गणेश चतुर्थी है। बप्पा का ग्रैंड वेलकम हुआ अराउंड द ग्लोब और देसी फैमिलीज का फेवरेट एनुअल रिचुअल भी शुरू हो गया। घर में बप्पा आए हैं, डेकोरेशन है, आरती है एंड ऑब्वियसली मोदक की सिक्योरिटी सबसे ज्यादा टाइट है आज के दिन। और अगर तुम दुनिया के किसी भी कोने से मुझे सुन रहे हो, किसी भी साइड से मुझे सुन रहे हो, ट्रस्ट मी, डिस्टेंस से देसीपन खत्म नहीं होता है। तुम्हारे घर में बप्पा आए हो या व्हाट्सएप के फैमिली ग्रुप में 47 मैसेजेस ऑफ गणपति बप्पा मोरे आए हो, सेलिब्रेशन तो सेलिब्रेशन है। सो लेट्स स्टार्ट दिस मॉर्निंग विद अ लॉट ऑफ बप्पा एनर्जी, लेस ऑब्स्टिकल मोर अपॉर्चुनिटीज, और मंडे के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेशेंस। I'm right here with Bollywood का म्यूजिक, ढेर सारी मस्ती, ढेर सारी मिर्ची, बहुत सारी यहाँ वहाँ की बातें और अराउंड द वर्ल्ड की अपडेट्स टू मेक योर मॉर्निंग्स अ लिटिल मोर मिर्ची दैर। एंड हे, कम से हाय टू मी इंस्टाग्राम और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिंस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, यानी कि 9033647244। गणपति बप्पा मोरिया एंड मिर्ची मॉर्निंग्स फुल ऑन जोर शोर से शुरू हुआ है। लेट्स हियर सम मिर्ची दार बैंगर्स, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।

Time for Mirchi Hour ke 3 with me Priscilla on Mirchi Mornings. Mirchi Hour ke 3. सबसे पहले और रिपोर्ट बाय द टेलीग्राफ सेज लीडर्स फ्रॉम नॉर्दर्न आयरलैंड स्कॉटलैंड एंड वेल्स आर एक्सपेक्टेड टू मीट टुडे टू साइन अ जॉइंट डिक्लेरेशन कॉलिंग फॉर द राइट्स टू होल्ड रेफरेंडम्स ऑन लीविंग द यूके. नंबर टू पर जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने यूएस ओपन जीत लिया है अमेरिकन बेन शेल्टन को फाइनल में डिफीट करके. दिस इज ज़ेवरेव का सेकेंड ग्रैंड स्लैम टाइटल ऑफ 2026 आफ्टर विनिंग द फ्रेंच ओपन अर्लियर दिस ईयर एंड द विनर्स चेक इज फॉर $5.5 million. And lastly, Asia Cup trophy presentation takes an unexpected turn. India's women's team won the 2026 Women's Asia Cup but didn't expect the trophy from ACC chief Mohsin Naqvi, who is Pakistan's interior minister. BCCI secretary Devajit Saikia said India had offered alternative presentation arrangements which were not accepted. India's coach Amol Majumdar said the team stands by the BCCI's decision, adding simply, "We are champions." And there you have it, Mirchi Hour ke 3 for this hour with me Priscilla. Connect with me Insta or X pe, mera handle hai Mirchi Pris and WhatsApp ka number hai 9033 Mirchi. That's 9033 647 244. Stay tuned and stay hot.

0: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग,
1: मिर्ची वॉच इट।
0: And Microsoft CEO Satya Nadella is adding his voice to the conversation around slowing down the race to develop artificial intelligence. His point is pretty straightforward, I must say. If we are chasing something as powerful as super intelligence, it needs to remain under human control and actually help humanity, he said. Unka logic hai, basically, agar technology insaan ke control mein nahi hai aur insaan ki help bhi nahi kar rahi hai, to phir bhai किस काम की है टेक्नोलॉजी. Nadella is calling for a more deliberate pace and stronger evaluation before pushing AI capabilities further. And he's not the only big name saying, guys, maybe let's put the foot slightly off the accelerator. OpenAI के Sam Altman, Elon Musk and Anthropic CEO Dario Amodei have also previously backed calls for slowing the pace of AI development. And honestly, as South Asian, we've been preparing for this moment our whole lives. Because हम सबकी मम्मियाँ जो है ना, वो ऑलरेडी घर पर सुपर इंटेलिजेंट सिस्टम रन कर रही हैं, क्योंकि उन्हें सब पता होता है. मैं हूं प्रिसला तुम्हारे साथ, एंड आई बेट योर मॉम वुड नो यू शुड फॉलो मी राइट नाउ. इंस्टाग्राम और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, और नंबर है व्हाट्सएप का 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

Hey there, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. It's time for birthday celebration on Mirchi Mornings. सबसे पहले happy birthday to everyone celebrating. और आज का दिन वैसे भी super special है because it's गणेश चतुर्थी यार. और बप्पा से एक special birthday wish है तुम्हारे लिए कि तुम्हारी life में obstacles यानी विघ्न कम हो, happiness यानी खुशियाँ बहुत ज्यादा हो और केक बहुत ज्यादा कम कैलोरी वाला हो. और मुझसे शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो. इंस्टाग्राम हैंडल बाद में बताऊंगी जहाँ तुम मुझे बर्थडे पिक्चर्स में टैग कर सकते हो. लेकिन अभी तुम्हारे बर्थडे ट्विंस की लिस्ट लेकर आई हूँ. हॉलीवुड से एंड्रू लिंकन एके रिक ग्राइम्स फ्रॉम द वॉकिंग डेड टर्न्स अनदर ईयर वाइजर दिस ईयर. इट्स वन ऑफ माय फेवरेट शोज. देन वी हैव वन एंड द ओनली वन एमी वाइनहाउस. हिप हॉप रॉयल्टी नास भी आज ही अपना बर्थडे शेयर करते हैं तुम्हारे साथ. एंड बिहाइंड द कैमरा ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर बोंग जून हो द मैन बिहाइंड पैरासाइट. एंड ऑल्सो आज बर्थ एनिवर्सरी है सैम नील की. और हमारे बॉलीवुड से आयुष्मान खुराना द एक्टर सिंगर एंड वो बंदा जो अपने करियर चॉइस में हम सबको प्लॉट ट्विस्ट दे चुका है उनका भी आज हैप्पी वाला बर्थडे. प्लस के ड्रामा फैंस ली जोंग सूक इज ऑल्सो अ बर्थडे बॉय टुडे. हैप्पी बर्थडे टू यू वंस अगेन अलॉन्ग विद गणपति बप्पा मोरिया. खूब सारे मोदक खाओ, मुझे भी भिजवा सकते हो एटलीस्ट पिक्चर्स ऑन इंस्टाग्राम. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर 9033647244. यहाँ पर तुम अपने बर्थडे शाउट आउट्स भेज सकते हो मुझे. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: हेलो, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, और अब टाइम है गोल्ड रेट अपडेट का, ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स।
1: RajJewels.com wishes happy गणेश चतुर्थी टू everyone। गणेश चतुर्थी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,280, $4,280 पर ट्रेंड के साथ इस गणेश चतुर्थी की सेलिब्रेशन के लिए हम आपको इनवाइट करते हैं RajJewels.com पे, जहां पे 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड। आप आज गोल्ड के थोड़े से रिड्यूस प्राइजेस का बेनिफिट ले सकते हैं और RajJewels.com के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल।
0: मिर्ची मॉर्निंग्स पर सुना तुमने एक्सक्लूसिव गोल्ड रेट अपडेट मेरे यानी कि प्रिसला के साथ। बने रहो इंस्टा और एक्स पर भी। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में एंड इट्स टाइम फॉर अपडेट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। सबसे पहले रिपब्लिकन कैंडिडेट बो फ्रेंच इज फेसिंग बैकलैश इवन फ्रॉम पीपल इन हिज ओन पार्टी आफ्टर मेकिंग रेसिस्ट कमेंट्स अबाउट साउथ एशियन स्टूडेंट्स सेलिब्रेटिंग एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास फुटबॉल गेम। नंबर टू पर रशिया हैज प्रपोज्ड जॉइंटली बिल्डिंग इट्स इनवोल्गा हाई स्पीड ट्रेन्स इन इंडिया। द कॉन्सेप्ट हैज अ डिजाइन स्पीड ऑफ अप टू 360 किलोमीटर्स पर आवर। एंड लास्टली फ्रॉम क्रिकेट, अभिषेक शर्मा ने T20 में स्पीड का डेफिनेशन ही अपडेट कर दिया है। इंडिया ओपनर smashed 82 off just 32 balls against Afghanistan and became the second fastest player to reach 6,000 T20 runs in terms of balls faced, doing it in just 3,420 balls. And that's your Mirchi Hour ke 3-4 this hour. Main hoon Prisala, tumhare saath mein. Connected raho mujhse Insta aur X par. Mera handle hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. WhatsApp bhi kar sakte ho, 9033 Mirchi is my number. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: आज पापा का दिन है और यूनिवर्स का सिंपल सा मैसेज आया तुम्हारे लिए कि आज तुम्हारे सितारे क्या कह रहे हैं। मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में एंड वेलकम बैक टू मिर्ची मॉर्निंग्स।
1: मिर्ची राशि जोन
0: इट इज यानी कि मेष राशि। आज स्पीड थोड़ी सी कम, स्ट्रेटजी थोड़ी सी ज्यादा, बिग डिसीजंस को रश मत करो, स्पेशली शॉपिंग में कार्ट में डालने और बाय दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखो। लकी कलर इज कोरल। लकी नंबर इज 6। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, आज पेशेंस इज योर सुपर पावर। पैसा खर्च करने से पहले एक बार सोच लेना मुझे रियली चाहिए या बस सेल ने इमोशनल कर दिया है। लकी कलर इज सेज ग्रीन। लकी नंबर इज 4। जेमिनी यानी मिथुन राशि, गुड न्यूज, लव और फाइनेंसेस दोनों में लकी स्ट्रीक पॉसिबल है और फैमिली वाइब्स भी आज बेटर रहेंगी, मतलब कि आज फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में म्यूट करने की जरूरत ना पड़ेगी। लकी कलर इज सनशाइन येलो। लकी नंबर इज 3। कैंसर यानी कर्क राशि, आज इमोशनल वार्म्थ और फैमिली बॉन्डिंग दोनों स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं। लव लाइफ भी स्माइल करेगी तुम पर, बस हर छोटी छोटी बात पर नेटफ्लिक्स लेवल का ड्रामा मत बनाना। लकी कलर इज पर्ल व्हाइट। लकी नंबर इज 2। लियो यानी कि सिंह राशि, हार्ड वर्क तो करें लेकिन कम्युनिकेशन काम रखें। ऑफिस में किसी ने अपना बटन प्रेस किया हो तो पापा को याद करना और रिप्लाई करना। लकी कलर इज रॉयल ब्लू। लकी नंबर इज 1। वर्गो यानी कन्या राशि, आज डेली स्ट्रेस को ऑर्गेनाइज करने का दिन है। एवरीथिंग डजंट हैव टू बी परफेक्ट, लेकिन हाँ, इंक्लूड दैट वन ईमेल यू've रीरिटन 17 टाइम्स। लकी कलर इज लैवेंडर। लकी नंबर इज 8। और गणेश चतुर्थी पर पापा से बस इतना है कि क्लियर माइंड रखो, काम हार्ट रखो और अननेसेसरी ड्रामा का विसर्जन कर दो। मैं लेकर आती हूँ बाकी बची 6 राशियां इन जस्ट अ व्हाइल। तब तक तुम सुनो ये मिर्चीदार बैंगर्स और मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

रेडियो मिर्ची, रेडियो मिर्ची इट्स हॉट। मिर्ची, मिर्ची, मिर्ची, मिर्ची, मिर्ची, मिर्ची, मिर्ची, मिर्ची, मिर्ची, मिर्ची, मिर्ची, मिर्ची, मिर्ची, मिर्ची, मिर्ची, मिर्ची, मिर्ची, मिर्ची, मिर्ची, मिर्ची, मिर्ची, मिर्ची, मिर्ची, मिर्ची, मिर्ची, मिर्ची, मिर्ची, मिर्ची, मिर्ची, मिर्ची, मिर्ची, मिर्ची, मिर्ची, मिर्ची, मिर्ची, मिर्ची, मिर्ची, मिर्ची, मिर्ची, मिर्ची, मिर्ची, मिर्ची, मिर्ची, मिर्ची, मिर्ची, मिर्ची, मिर्ची, मिर्ची, मिर्ची, मिर्ची, मिर्ची, मिर्ची, मिर्ची, मिर्ची, मिर्ची

0: पापा आए हैं तो साथ में लेकर आए तुम्हारे लिए रिमाइंडर की लाइफ में प्रॉब्लम्स का सलूशन सितारों से मिलता है। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स पर
1: मिर्ची राशि जोन।
0: लीब्रा यानी तुला राशि, मनी मैटर्स में डिसिप्लिन रखो। छोटे इमोशनल या करियर हिकअप्स आ सकते हैं, बट डोंट स्पाइरल। एक बैड मॉर्निंग का मतलब बैड लाइफ नहीं होता बेबी। लकी कलर इज पीच, लकी नंबर इज 7। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, करियर या इमोशंस में माइनर टर्बुलेंस पॉसिबल है। रिएक्शन से पहले थोड़ा सा पॉज करो, फिर थोड़ा सा इधर उधर देखो, टाइपिंग करो, फिर डिलीट कर दो, ठीक है। लकी कलर इज बर्गंडी, लकी नंबर इज 5। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, एक्स्ट्रा एनर्जी को गोल्स में लगाओ यार, लेकिन डाइट और रूटीन को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। एम्बिशन अच्छा होता है, लेकिन ब्रेकफास्ट स्किप करना इज नॉट अ बिलियन लेकिन ब्रेकफास्ट स्किप करना इज नॉट अ बिलियनर टाइप का क्वालिटी। लकी कलर इज टर्कोइज, लकी नंबर इज 9। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आज कंसिस्टेंसी विंस। काम पर फोकस रखो, रूटीन को स्टेडी रखो और बॉडी को भी यार थोड़ा सा टेंशन दो। बॉस को इम्प्रेस करने के चक्कर में लंच को कैलेंडर इन्वाइट मत समझ लेना। लकी कलर इज रस्ट ऑरेंज, लकी नंबर इज 4। अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली का सपोर्ट आज सरप्राइजिंगली यूजफुल हो सकता है। सब कुछ अकेले हैंडल करने की जरूरत नहीं होती है बेटा, और हेल्थ को प्रायोरिटी देना जरूरी है। यू नोट योर फोन की चार्जर लगाए और चार्ज रहोगे। लकी कलर इज इलेक्ट्रिक ब्लू, लकी नंबर इज 11। पाइसेस यानी कि मीन राशि, आज इमोशनल सपोर्ट और सेल्फ केयर दोनों इंपॉर्टेंट है। अपने पीपल को क्लोज रखो, हग करके रखो, हेल्थ के बारे में अपनी बॉडी की सुनो और ओवरथिंकिंग को वेकेशन पर भेज दो। लकी कलर इज सी ग्रीन, लकी नंबर इज 12। गणपति बप्पा के दिन का इंटेंशन काफी सिंपल है, जो कंट्रोल में है उस पर फोकस करो, जो नहीं है उसका स्ट्रेस बप्पा को आउटसोर्स कर दो। मैं हूं प्रिसिला, तुम्हारे साथ में। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, और व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक टिकटॉक चलती है, माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है। रुक तो जा तू है कौन, ये तो बता तू है कौन, कहां से आई है कहां तो जाएगी, पागल करके मुझे मरवाएगी।

मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में ये है मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड बिफोर आई से सी यू टुमारो, एक स्टोरी जो लिटरली मेड मी गो एक्सक्यूज मी व्हाट, सुनाना बनता है तुम्हें। चाइना के एक सेकेंडरी स्कूल की एक अलेजेड पॉलिसी पर बैकलैश हो रहा है इंटरनेट पर, जहां पे स्टूडेंट्स को पूरे एकेडमिक ईयर में सिर्फ एक इमरजेंसी टॉयलेट ब्रेक अलाउ किया जा रहा है। यस, यू हर्ड इट राइट, पूरे साल भर में एक इमरजेंसी टॉयलेट ब्रेक। और अगर किसी स्टूडेंट ने सेकेंड टाइम वॉशरूम यूज किया, अपेरेंटली पेरेंट्स को स्कूल बुलाया जा सकता है। गाइज, ब्लैडर को टाइम टेबल थोड़ी मिलता है यार, क्या हो रहा है ये। द पॉलिसी रिपोर्टेडली केम टू लाइट आफ्टर अ टीचर शेयर्ड अ फोटो ऑफ अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आउटलाइनिंग क्लासरूम मैनेजमेंट रूल्स। ये स्टोरी जो है इसने स्पार्क किया है काफी सारा क्रिटिसिज्म, स्पेशली अराउंड स्टूडेंट्स वेलबींग। सो आज गणेश चतुर्थी पर बप्पा को याद करके एक सिंपल सी विषय यार, कि सबको ऑब्स्टिकल से दूर रखो और होपफुली बेसिक कॉमन सेंस की सप्लाई चाइना वालों को तो देनी ही चाहिए, क्योंकि वो बप्पा की मूर्तियां बहुत ज्यादा बनाते हैं चाइना में टू सेल अक्रॉस द वर्ल्ड। थोड़ी सी कॉमन सेंस भी बप्पा उनको दे देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वैसे ऑन दैट फनी नोट, मैं जाती हूँ यहाँ से, टाटा बाय बाय फ्रॉम मी। थैंक यू सो मच फॉर हैंगिंग आउट विद मी दिस मॉर्निंग थ्रू द म्यूजिक एंड थ्रू द मैडनेस एंड न्यूज एंड ऑफ कोर्स मिर्ची। एंड होपफुली आज का दिन तुम्हारा थोड़ा सा बेटर हुआ होगा मेरी वजह से। मैं हूँ प्रिसिला एंड दिस इज वेयर आई से मिर्ची मॉर्निंग्स आउट। लेकिन तुम मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो जाकर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। कल फिर से मिलेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, काफी सारा देसी स्वैग बबराएंगे। अभी के लिए मिर्ची तार गाने तुम्हारे लिए, व्हाट्सएप का नंबर मेरा है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

मिर्ची, इट्स हॉट। रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मम्मा ने इतनी टिप्पणियां दी है ना मुझे जिंदगी में, उन बातों को मैंने अक्सर नजरअंदाज कर दिया है, लेकिन आज मैं ऑटो वाले भैया की ये जो बात थी ना, उसको नजरअंदाज नहीं कर पाई।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on मिर्ची। और ये ऑटो वाले भैया जो होते हैं ना, इन लोगों के पास ना बड़े पिटारे होते हैं कहानियों के। और बातों ही बातों में ना एक ऑटो वाले भैया से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने न जाने डर के बारे में बात करनी शुरू कर दी। आई मीन आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कि ऐसा क्यों हुआ कि वो डर के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने डर के बारे में बात करते करते ये बात कही कि मैडम जब छोटे थे ना तो इतना डर नहीं लगा करते था, लेकिन बड़े होते होते ना डर जो है वो उम्र के साथ साथ बढ़ता गया। And I was like, हाँ यार, ये कितनी सही बात कह रहे हैं। Actually, जब हम छोटे थे तो हमें किसी चीज का डर नहीं लगता था। तब हमें लगता था कि हम दुनिया मुट्ठी में कर लेंगे। तब हमें ना अनजानों से डर लगता था, ना इस बात से डर लगता था कि कोई हमें किस नजर से देख रहा है, ना इस बात से डर लगता था कि पॉकेट मनी खत्म हो गई है, ना ही हमें ऊंचाई से डर लगता था, ना ही हमें गहराई से डर लगता था। हाँ, डर लगता था तो सिर्फ अंधेरों से, मम्मा की घूरती हुई निगाहों से, टीचर की डांट से और मेरी खुद की आर्ट से। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए ना, ये डर जो है ये कितना बढ़ता गया ना, अब हम न जाने कितनी सारी चीजों को लेकर सिर्फ और सिर्फ डरते रहते कि नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना वरना वो हो जाएगा, वो नहीं करना वरना ये हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस, महीने की शुरुआत होती है और हमें EMI से डर लगने लग जाता है कि ओ नो, अभी तो सैलरी आई है और अब चली जाएगी, कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा इस महीने हमारे पास। एडवेंचर करने से भी डर लगता है मालिक, अब ऐसा लगता है कि यार गए और गिर गए तो क्या होगा। पहले ये सब बातें कौन सोचा करता था यार, हम तो सिर्फ कर जाया करते थे, सोच कर कुछ नहीं किया करते थे। मैंने कहा ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे डर भी बढ़ता जाता है। लेकिन एक मजेदारी वाली बात बताऊं, दो ही उम्र के ऐसे पड़ाव होते हैं जहां पर डर हमें कम लगता है या ना लगता है, या तो बचपन या फिर बुढ़ापा। क्योंकि जो मैंने अपने घर के बड़ों से बात करी है ना, वो भी अक्सर यही कहते हैं, अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी देखी हुई है। तो ये जो डरने वाला माहौल बना हुआ है ना हमारी लाइफ में, वो अभी अभी है यार, आगे जाके नहीं होगा, तो ज्यादा फिक्र नहीं करने का। और अभी के लिए मेरे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हूँ, आपसे कहती हूँ यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मैं अक्सर आपसे दाल चावल फिल्मों के बारे में जिक्र करती हूँ, यानी कि वो फिल्में जो हम कितनी बार भी देख लें बोर नहीं होते हैं, और उनमें से एक आती है वेलकम
0: मिर्ची VCR।
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और क्या फिल्म बनाई थी भाई, क्या फिल्म बनाई थी, इतनी बढ़िया और इतनी जबरदस्त कि हंसते हंसते पागल हो गए थे सबके सब, तब भी और आज भी पागल हो जाते हैं। ऐसी कॉमेडी, ऐसी टाइमिंग, ऐसी कास्ट, अब तो ऐसी फिल्में बनती नहीं है यार, तभी तो वेलकम की इतनी कदर है। लेकिन बताए क्या, अगर कदर को पैसों में तोला जाए ना, तो कटरीना कैफ की एक ड्रेस थी इस फिल्म में जो उन्होंने पहनी थी, एक सिल्वर कलर की ड्रेस थी। एंड ये जो उनकी सिल्वर कलर की ड्रेस थी, ये उनकी पर्सनल वार्डरोब में से निकली हुई ड्रेस थी। इसका वर्थ था 2,00,000 रुपए का, जो उनको कभी उनके किसी फ्रेंड ने, जो फैशन डिजाइनर है एमिलियो पुची, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट अ ब्रांड पर्सन, प्रोबेबली एमिलियो पुची इज फैशन की दुनिया में सम बिग पुची, एंड दैट इज एग्जैक्टली द रीजन की ये ड्रेस का प्राइस वॉज सो हाई। हाउ स्वीट ऑफ कटरीना कि उन्होंने इस फिल्म में इस ड्रेस का इस्तेमाल करने का सोचा भी। मैं होती तो मैं इतनी महंगी ड्रेस कभी क्यों लेकर जाती यार सेट पे। एनीवेज, मुझे तो कोई फिल्म भी ऑफर नहीं कर रहा है। मगर जब अनिल कपूर को ये फिल्म ऑफर करी गई थी, तो इट वॉज अनिल कपूर हिमसेल्फ जिसने अनीस बाजमी द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म उनको ये सजेस्ट किया था कि उनके कैरेक्टर का नाम मजनू भाई होना चाहिए। आई डोंट नो हाउ डिड ही थिंक ऑफ इट, बट क्या नाम रखा यार, जबरदस्त एकदम। एंड यू नो व्हाट, एक बड़े इत्तेफाक की बात ये रही कि 1986 में अनिल कपूर ने सलमा आगा के साथ मिलकर एक पॉप एल्बम रिलीज किया था जिसमें उन्होंने गाया था यस, और उस एल्बम का नाम था वेलकम। किसने सोचा था कि इतने सालों बाद वो एक फिल्म करेंगे और उस फिल्म का नाम भी होगा वेलकम। लेकिन इस फिल्म का नाम वेलकम हमेशा नहीं था। एक्चुअली 2004 में सलमान खान ने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि वो फिरोज नादियाड वाला के साथ एक फिल्म कर रहे हैं जिसका नाम है दीवाने हुए पागल, एंड उसमें उनके ऑपोजिट कटरीना कैफ है। एंड वेल, दीवाने हुए पागल ओरिजिनल नाम था वेलकम का, जिसको लेटर ऑन टाइटल किया गया वेलकम। और इस फिल्म में सलमान खान काम करने वाले थे, लेकिन ही एग्जिटेड द फिल्म। फिर शाहिद कपूर आए, फिर इस फिल्म का नाम कर दिया गया था प्यार किए जा, और वो भी इस फिल्म से निकल गए। फाइनली अक्षय को इस फिल्म के लिए साइन किया गया और इस फिल्म का नाम रख दिया वेलकम। आई थिंक नाम में ही कोई कमी थी यार। दीवाने हुए पागल में वाकई में दीवाने हुए पागल और पिक्चर छोड़ गए, प्यार किए जा का जा पकड़ लिया और शाहिद कपूर निकल गए। जब वेलकम बोला तो कास्ट आई और फिर कभी गई नहीं। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. Sara zamana,
1: sara ka diwana. Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi, it's hot.
2: बड़ी फिल्मों की यही प्रॉब्लम होती है, जब किसी बड़ी फिल्म में बड़ी कास्ट होती है ना, तो आपस में इस बात के झगड़े होने लग जाते हैं कि इम्पोर्टेंस ज्यादा किसको मिलनी चाहिए। ऐसा ही कुछ वेलकम के साथ भी हुआ।
1: मिर्ची चैट रूम।
2: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड ऐसा कहा जाता है कि अनिल कपूर और अक्षय कुमार, इन दोनों के बीच में बड़े इश्यूज चल रहे थे जब इस फिल्म के क्रेडिट्स की बात की जा रही थी। हाँ, मतलब ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि भाई किसको इस फिल्म के क्रेडिट्स में सबसे पहले फीचर करना चाहिए, किसका नाम सबसे पहले आना चाहिए, अनिल कपूर का आना चाहिए या अक्षय कुमार का आना चाहिए। एंड दोनों ही अपने अपने नाम के लिए वोट कर रहे थे कि मेरा आना चाहिए, मेरा आना चाहिए, कौन सीनियर है कौन नहीं है, ये सारी जो डिसएग्रीमेंट्स थी ये सब चल रही थी। बस क्या, उसी टाइम पर इस फिल्म के डायरेक्टर अनीस बाजमी ने अपना दिमाग लगाया। ही स्टेप्ड इन एंड ही सेड, दोनों में से किसी का नहीं आएगा, बोलो पेंसिल, दोनों के नाम कैंसिल, क्रेडिट में सबसे पहला नाम आएगा फिरोज खान साहब का, बिकॉज ही इज द सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट ऑन द सेट्स ऑफ दिस फिल्म, एज सिंपल एज दैट। लेकिन आपको पता है, जब फिरोज खान इस फिल्म के लिए शूट कर रहे थे, ही वॉज नॉट कीपिंग वेल। ये वो फिल्म थी जिसको शूट करते करते ही वॉज ऑल्सो डीलिंग विद हिज कैंसर। दुनिया को इस बारे में नहीं पता था, क्योंकि हमें तो तब पता लगा जब अचानक से एक दिन खबर आई कि फिरोज खान साहब इज नो मोर अमंगस्ट अस। एंड वेलकम वाज हिज लास्ट फिल्म दैट ही डिड। इनफैक्ट जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, उस दिन भी फिरोज खान हैड टू बी रश्ड टू द हॉस्पिटल, लेकिन इतनी बीमारी और इतनी तकलीफ में भी उन्होंने अपना प्रोफेशनलिज्म नहीं छोड़ा, उन्होंने अपना आर्ट नहीं छोड़ा। क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट को ये बात पता होती है कि ये एक चीज ऐसी है, इस आर्ट की भूख ऐसी है, जो कितना भी बड़ा कोई मर्ज क्यों ना हो, वो कैंसर ही क्यों ना हो, उसके अंदर का इंसान जिंदा रखेगी। और इसी जिंदा दिली का नाम फिरोज खान था। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हम सबको पता था कि
2: जस्सी जस्सी कोई नहीं
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
1: हाय दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड द शो जस्सी जस्सी कोई नहीं वाज अ हिट, क्योंकि ये शो बात करता है अबाउट अ गर्ल हु इज अ गीक। और गीक्स को ट्रेंड में लाते हुए दिस शो ट्राइड चेंजिंग द आउटलुक कि दिमाग हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। अरमान सर पर क्रश करती जस्सी के दिलों की धड़कन के साथ हमने भी उतार चढ़ाव किए हैं यार। एंड आई रिमेम्बर कैसे वी यूज्ड टू फील बटरफ्लाइज इन आवर स्टमक जब अरमान और जस्सी के बीच कोई मोमेंट आया करता था। और सबसे सही बात अबाउट द शो वॉज कि कोई नहीं जानता था कि जस्सी रियल लाइफ में कैसी दिखती थी। एंड इट वॉज केप्ट टू बी अ बिग सीक्रेट। और उस टाइम पर तो ज्यादा टफ भी नहीं था बिकॉज पेपराज़ी एंड सोशल मीडिया तो था नहीं। और जब जस्सी का मेकओवर हुआ एंड वी गॉट टू सी मोना सिंह टू बी द फेस बिहाइंड जस्सी, ऑल वर इन ऑफ हर। और मुझे याद है कैसे हमने उस एपिसोड को किसी भी कीमत पर मिस ना करने की कसम खा ली थी। काफी शोज आए काफी शोज गए, लेकिन ये बात तो सच है यार कि जस्सी जैसी कोई नहीं। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: अनुराधा जी की आवाज में दिस गाना फ्रॉम द फिल्म साजन। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम। अय हाय हाय, देखो पता है 90s का जमाना, तो मुझे नहीं पता कि डेटिंग के लिए कितना सेफ था और कितना यकीन कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। आज की बात मैं जरूर कर सकती हूँ। आज के टाइम पर अगर कोई ऐसा कह देना कि कसम चाहे ले लो खुदा की कसम, भाई तुम किसी की भी कसम खा लो, मुझे ये पता है कि तुम्हारा डाइट फूड कसम ही है, तुम्हारा चीट फूड भी कसम ही है, और जो तुम्हारा मेन कोर्स यूजुअली तुम खाते हो वो भी कसम है। यानी कि आजकल उठते बैठते सब लोग कसम ही खा रहे होते हैं, और मुझे इस डिश पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना, क्योंकि वो किस तरीके की कसम खा रहे होते हैं ना, हमें उसकी क्वालिटी का बिल्कुल नहीं पता है। आप क्या बोलते हो, आप कर लेते हो यकीन इस कसम नामक डिश का जो आजकल सब खाते रहते हैं?
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। चलो यार, ये कसमें खा के नहीं तो सुन के पेट तो काफी भर गया है। अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स 90s के गानों के ज्ञान की तरफ, जहां पर दो गानों को मिक्स करके मैं चला देती हूँ और आपको पहचानना होता है कि ये जो दो गाने हैं ये हैं कौन से। यहाँ टेस्ट होता है आपके ज्ञान का। तो यानी कि इस काम में सबसे इम्पोर्टेंट रोल है ध्यान का। तो ध्यान से सुनिए और मुझे बताइए कि ये दो गाने कौन से हैं। Here we go।

बस जी, अब मुझे डीएम करना है और मैं इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा और बता देना है कि ये दो गाने कौन से हैं। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: कोयला मूवी का एक गाना था बदन जुदा होते हैं। वेल ये गाना शायद हमें आज याद भी है और नहीं भी है, हमने कभी सुना और उसको अनसुना भी कर दिया, लेकिन इस गाने में एक म्यूजिक का पीस है जो कि मूवी में भी काफी सारे सीन्स में फिर इस्तेमाल हुआ है। और ये जो म्यूजिक का पीस है ना, ये सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल है, लेकिन यही म्यूजिक का पीस ओरिजिनल नहीं है बाबू मोशाय।
2: मिर्ची थग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और राजेश रोशन की दी गई म्यूजिक का ये जो गाना था, विच गोज दिस वे।

is actually not an original piece of music. Vangelis करके there was this music composer जिसने बहुत ही खूबसूरत music दिया है and इनके music से राजेश रोशन अक्सर काफी inspired रहे हैं. सिर्फ वैंगेलिस का यही म्यूजिक का पीस ही नहीं, उन्होंने काफी सारे और म्यूजिक के पीसेस भी उठाए हैं अपने गानों के लिए. एंड ये वाला जो म्यूजिकल पीस है दैट इज कॉल्ड कॉन्क्वेस्ट ऑफ पैराडाइज, व्हिच साउंड्स जस्ट ब्यूटीफुली अमेजिंग.

अगर आपके पास भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है कि 90s या अर्ली 2000 की कोई फिल्म या गाने कहीं से कट कॉपी पेस्ट है तो डीएम कर दीजिएगा मुझे ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: आज का के ड्रामा का डेफिनेशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम 2000s का के ड्रामा।
2: आज की बात 90s के साथ।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और ऐसा नहीं है कि हम 90s किड्स के ड्रामास नहीं देखा करते थे। हम तो के ड्रामास तब से देखते आ रहे हैं जब से OTT प्लेटफॉर्म्स नहीं आए थे इन के ड्रामास को इंट्रोड्यूस करने। और हमारे लिए के ड्रामास यूज्ड टू बी एकता कपूर के सीरियल्स, जो के से ही शुरू हुआ करते थे। राइट फ्रॉम क्यूकी सास भी कभी बहू थी, टू कुसुम, कहीं किसी रोज से लेकर कसौटी जिंदगी की, यू नेम इट। और हमने ये के ड्रामास देखे हुए हैं। फर्क सिर्फ इतना है तब के और अब के ड्रामास में कि तब 7 फेरे 7 दिन लेते थे, और आज के ड्रामास में शादी होगी कि नहीं ये देखने को आंखें तरस जाती हैं। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

चल चल चल चल चल चल जब ठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बाटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और होश उड़ाए ओए।

0: midday mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear TV के शटर वाले कैबिनेट,
2: यादों को चिट्ठी।
1: क्या स्टार थे यार तुम ड्राइंग रूम के। हमारे घर में नहीं थे, लेकिन जिसके भी घर में मिला करते थे ना, उस घर को विजिट करते वक्त मेरा कंसंट्रेशन तुम पर ही होता था कि क्या कमाल है यार, टीवी है लेकिन इतनी खूबसूरती से छुपा हुआ। वही बात है ना कि जिस चीज में सीक्रेसी होती है ना, उस चीज को जानने की एक्साइटमेंट भी ज्यादा होती है। मुझे हमेशा लगा करता था कि ये टीवी हमारे टीवी से अलग होगा यार, लेकिन नहीं नहीं, बाद में पता लगा कि तुम वही कलर टीवी हो जो हमारे घर पर भी था, लेकिन ऐसे एक शटर वाले कैबिनेट में खूबसूरती से छुपा हुआ नहीं था हमारे घर का टीवी। तुम में रखे टीवी पर प्रोग्राम देखना ऐसा लगता था जैसे जब थिएटर में मूवी चालू होने से पहले पर्दा उठा करता था और गिरा करता था ना, वैसी सी फीलिंग आती थी अगर घर पे बैठे टीवी की स्क्रीन चालू होने से पहले तुम्हारा शटर हटाया जाता था। बड़ा ही ग्रैंड फील होता था यार। आजकल तुम्हें पता है टीवी कितने एक्सपोज्ड है, घर की दीवार पर खुलेआम टंगे रहते हैं, बेबाक और बिंदास। तुम्हारी ग्रेस की फैन, तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

Mirchi. It's hot.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Countdown shows में बाली ब्रह्म भट्ट का जब ये गाना आया करता था तो at that time this was just a melody for us. किसको पता था कि बड़े होते होते ये गाना जज्बात में तब्दील हो जाएगा?
0: मिर्ची 90s का सेट.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. And 90s के दौर का बाली ब्रह्म भट्ट का एल्बम का ये गाना.
2: तेरे बिन जीना नहीं, ओ मेरी जाने वफा.
1: What a melodious track, यार. लेकिन ये जो गाना आया करता था तो मुझे ये गाना इसके एस्थेटिक्स की वजह से अच्छा लगता था, इसके वीडियो की वजह से अच्छा लगता था, इसका म्यूजिक बड़ा अच्छा लगता था, कानों में ना काफी चाशनी खोल दिया करता था. लेकिन इसके लिरिक्स पे कभी ध्यान ही नहीं गया अंटिल एंड अनलेस मैं बड़ी हुई, क्योंकि ये गाना जो है वो ये कहता है कि तेरे बिन जीना नहीं ओ मेरी जाने वफा, जिंदगी भर साथ रहकर मुझे होना नहीं है जुदा. And that is such a heartbreaking statement for anyone to make, yeah. Seriously, I mean, some people जो न जाने कितने साल एक साथ बिता देते हैं and then there comes a situation जहां उनको ये decide करना पड़ जाता है कि अब वो साथ नहीं रह सकते. मतलब वो जो रोज बातें हुआ करती थी, वो जो रोज सुबह गुड मॉर्निंग होती थी, गुड नाइट उसी की आवाज से हुआ करती थी, दिन में कुछ वक्त साथ बिताया करते थे, एक दूसरे की जिंदगी जो है वो शेयर किया करते थे एक दूसरे के साथ, अब ऑल ऑफ अ सडन वो इंसान हमारे लिए स्ट्रेंजर बन जाए, ये सबसे ज्यादा दुखदायी हो जाता है यार. खुदा ना करे कि किसी के ऊपर ऐसा कहर बरसे, लेकिन क्या है कि किस्मत भी कोई चीज है. किस्मत में जिसका जितना साथ लिखा होता है ना, उतना ही बिता पाते हैं उसके साथ. बट स्टिल द पॉजिटिव वे टू लुक एट इट इज कि यार जितना बिताया क्या पता उतना भी ना होता हमारी जिंदगी में तो क्या करते. एटलीस्ट ये टाइप तो मिल गया ना जो बिता लिया है, बाकी किस्मत का लिखा और ऊपर वाले का किया, उसके कहे बिना तो यार एक पत्ता भी नहीं हिलता. चलो अब यहाँ पे बहुत काउंसलिंग हो गई है, टाइम फॉर दिस गाना. जाते जाते यही गाना आपके लिए लगाती हुई जा रही हूँ और आपसे कहती हूँ हम है रहे प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते. आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा और मुझे यहाँ के अलावा ढूंढ लीजिएगा ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा. स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची 'cause इट्स हॉट.

Energy. It's hot.

0: Mirchi, it's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

रूना लैला की आवाज़ है, गुलदार साहब के लिरिक्स हैं पुरानी जीन्स पे, आप हो श्रेया के साथ, हेलो हेलो वेलकम, यानी उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया। अच्छा, ये जो गाना अभी आपने सुना ना, ये गाना है फ्रॉम द फिल्म घरौंदा। ये फिल्म रिलीज हुई थी इन द ईयर 1977 और ये साल एक सुपर डुपर हिट साल था। अगर हम फिल्म्स की बात करें, ये वो साल था जब मल्टी स्टारर फिल्म्स रिलीज हो रही थी बॉक्स ऑफिस पे, बिग बैनर्स की रिलीज हो रही थी, फिर चाहे अमर अकबर एंथनी हो, परवरिश हो, हम किसी से कम नहीं हो। और ऐसे में अ वेरी लो बजट फिल्म विद अमोल पालेकर एंड यू नो जरीना वहाब, ये फिल्म ने भी अपनी जगह बना ली। इसी फिल्म का गाना आपके लिए लेकर के आई थी मैं। अब अगला कौन सा गाना है ये मैं बताऊंगी नहीं, सुना दूंगी, सुन करके वापस आओ। कहानी और किस्से उस जमाने के अभी तो शुरू हैं, आगे आगे सुनो होता है क्या।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

जहरीला इंसान मूवी से ये गाना विच इज पिक्चराइज्ड ऑन ऋषि कपूर, इट इज संग बाय किशोर दा। सुनाने वाली कौन है आपको पुरानी जींस पे? करेक्ट, आपकी प्यारी श्रेया। अच्छा सुनो ना, ये गाने के लिए ऋषि कपूर अड़ गए थे आरडी बर्मन के साथ, जिन्होंने ये गाना कंपोज किया है। वो चाहते थे कि ये गाना उनके लिए शैलेंद्र जी प्लेबैक करें। ऋषि कपूर को लग रहा था कि शायद किशोर दा की आवाज ना उनके लिप सिंक के साथ जाएगी नहीं, तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की भाई पंचम दास से कि प्लीज इसमें शैलेंद्र जी को ले लीजिए। लेकिन भाई आरडी बर्मन तो वही करते थे जो उन्हें सही लगता था। सो किशोर दा को लाया गया और क्या खूबसूरत रेंडिशन है ऑफ दिस प्रिटी प्रिटी ट्रैक ओ हंसिनी। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया। और कौन कौन से गाने हैं? अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है, आगे आगे सुनते जाओ, होगा क्या।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची के साथ।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अगला जो मैं आपको गाना सुनाने वाली हूँ ना, वो उस फिल्म का है जिसने रातों रात डेब्यू एक्टर्स को स्टार बना दिया था। एक थे कुमार गौरव और दूसरी थी विजेता पंडित। वेल, अगर आप रेट्रो फैन हैं तो आपको समझ में ही आ गया होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म लव स्टोरी। लेकिन इस फिल्म ने एक्चुअली में दो दोस्तों के बीच में हमेशा के लिए दरार डाल दी, मनोज कुमार और राजेंद्र कुमार। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। सो राजेंद्र कुमार चाहते थे कि वो अपने प्रोडक्शन हाउस के अंडर जब ये फिल्म लव स्टोरी बना रहे हैं और अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं, तो ऐसे में ही वांटेड कि मनोज कुमार शुड डायरेक्ट द फिल्म। मनोज कुमार ने मना कर दिया। मनोज कुमार ऑलरेडी अपना प्रोडक्शन हाउस लॉन्च कर चुके थे और उसके तहत अपनी फिल्म क्रांति, पहली फिल्म क्रांति बना रहे थे। सो ही पोलाइटली रिफ्यूज। लेकिन ये बात राजेंद्र कुमार को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। राजेंद्र कुमार थॉट कि उन्होंने मनोज कुमार को उनकी पहली फिल्म लाई थी, दैट वाज हरियाली, तो शायद दोस्त जो है वो इस बार फेवर रिटर्न करेगा, बट दैट डिड नॉट हैपन। एनीवे, इस फिल्म के गाने बहुत खूबसूरत है। कमिंग अप, आशुताई का ये गाना फ्रॉम द फिल्म लव स्टोरी, ओनली ऑन पुरानी जींस।

डिम्पल कपाड़िया इस फिल्म के लिए अपना साइनिंग अमाउंट बिल्कुल वापस नहीं देना चाहती थी, लेकिन फिर टीनू आनंद ने उनको ट्रिक किया, उनके साथ थोड़ी सी चालाकी की। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द आइकॉनिक फिल्म शहनशाह। तो इसमें बच्चन साहब हैं और इसमें मीनाक्षी शेषाद्री हैं। सो मीनाक्षी शेषाद्री वाले रोल के लिए टीनू आनंद ने साइन किया था डिम्पल कपाड़िया को, उनको ना उनके साइनिंग अमाउंट भी दे दिया था। लेकिन फिर टीनू आनंद को लगा कि बच्चन साहब पॉलिटिक्स को बाय बाय कह करके बॉलीवुड की फिल्में करने बहुत टाइम के बाद आ रहे थे, तो ऐसे में लोग कोई नया चेहरा देखना चाहेंगे अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट, तो उन्होंने फिर मीनाक्षी शेषाद्री को साइन कर लिया। आप भाई इस बात से काफ़ी ऑफेंड हुई डिम्पल, उन्होंने कहा कि मैं साइनिंग अमाउंट वापस नहीं करूंगी, क्योंकि टीनू आनंद बार बार उनसे उनका साइनिंग अमाउंट वापस मांग रहे थे। शी सेड कि आई एम नॉट द वन हु इज़ वॉकिंग आउट ऑफ द फिल्म, आपने अपना डिसीजन चेंज किया है तो मैं क्यों पैसे वापस करूं। और ये कंट्रोवर्सी उस टाइम के न्यूज़पेपर्स ने जम करके छापी थी, फिल्म मैगजीन्स ने जम करके छापी थी। फिर टीनू आनंद ने उनसे कहा कि अगर वो साइनिंग अमाउंट वापस दे देंगी तो वो दो बैक टू बैक फिल्में उनके साथ अनाउंस करेंगे अलोंग विद अमिताभ बच्चन। वेल, डिम्पल कपाड़िया के लिए बहुत ही ल्यूक्रेटिव ऑफर था, बिकॉज शी ऑलवेज वॉन्टेड टू वर्क विद अमिताभ बच्चन। क्या उन्होंने ये ऑफर एक्सेप्ट किया, यस और नो, बताऊंगी कुछ गानों के इस पर। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।

Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

है कि ये फिल्म देवानंद साहब ने जीना तवान के लिए बनाई थी। ये जो गाना भी आपने सुना इज फ्रॉम द फिल्म हीरा पन्ना। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। एंड ये जो फिल्म थी ना हीरा पन्ना, इसमें देव साहब और जीना तवान थे। अब क्यों ये फिल्म उन्होंने उनके लिए बनाई थी ऐसा व्हाई पीपल से इज बिकॉज ये जो फिल्म थी उससे पहले आई थी हरे राम हरे कृष्णा, और उस फिल्म में देव साहब ने जीना तमन को लॉन्च किया था। जीना तमन उस फिल्म में देव साहब की सिस्टर बनी थी। ये फिल्म हिट होने के बाद ना इतने सारे ऑफर्स आ रहे थे जीना तमन के, लेकिन सब बहन वाले। अब भाई जीना तमन तो ऑफकोर्स हीरोइन बनने आई थी, तो देव साहब ने उनको इन सारे ऑफर्स को ठुकराने के लिए मना किया और कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक और ऐसी फिल्म बनाऊंगा जिसमें तुम हीरोइन होगी, लीड हीरोइन की तरह काम करोगी। एंड देन दिस फिल्म के हीरा पन्ना। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ। ऐसे किस्से कहानियां यहाँ चलती रहेंगी, सो डोंट यू गो एनीवेयर।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: खिलवाड़ है। जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है। खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान,

नीतू जी अमिताभ बच्चन के साथ पहली बार काम कर रही थी इस फिल्म में। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, ये जो गाना है फ्रॉम द फिल्म याराना, जिसमें नीतू सिंह अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट पहली बार काम कर रही थी, तो शी वॉज इतना इन ओ ऑफ हिम कि उनके मुंह से ना डायलॉग्स ही नहीं निकल रहे थे। तो जब सेट पे उनको पहली बार जब डायलॉग बोलना था ना, वो था देखो किशन कोई आ गया। नीतू जी इतनी ज़्यादा अमिताभ बच्चन से इम्प्रेस थी कि उन्होंने कपकपाते शब्दों में कहा, देखो देखो अमित कोई आ गया। अब भाई नाम उनका किशन था, यानी बच्चन साहब का कैरेक्टर नेम, लेकिन अमित कहा उन्होंने। और काफी टाइम के बाद किशन किशन किशन किशन प्रैक्टिस करने के बाद ना, तब जा करके वो अमित को साइड रख पाई थी। पुरानी जीन्स पे उस जमाने की बातें मेरे यानी श्रेया के साथ होती रहेंगी, सो कम राइट बैक।

Mirchi. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

नीरज साहब ने इंडियन सिनेमा के लिए बहुत ज्यादा गाने नहीं लिखे हैं, लेकिन जो लिखे हैं उनमें से ये वाला अव्वल है। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, रफी साहब का था ये गाना एंड लिखने वाले थे नीरज जी। कहते हैं पोएट नीरज कह लो आप, या फिर यू नो लिरिसिस्ट नीरज कह लो, कवि नीरज कह लो, भाई बातों के शब्दों के तो वो हमेशा धनी थे। एंड दे ऑलवेज से कि नीरज जी को ना अपने होम टाउन में एक लड़की से प्यार हो गया था, पर वो प्यार उनको कभी नसीब नहीं हुआ, और उस प्यार के लिए वो हर साल खत लिखा करते थे और उसे पोस्ट नहीं करते थे कभी। तो ये जो गाना है ना, लिखे जो खत तुझे, ये एक्चुअली में उनका एक खत था। एंड इस खत को पढ़ लिया था रफ़ी साहब ने और उन्होंने कहा अरे इसको गाने में बनाओ ना, मैं इसे गाऊंगा। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची के साथ।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
2: आई आई आई आई आई आई आई आई।

इसी फिल्म को देखने के बाद तो सलीम जावेद साहब ने जिंदगी बदल दी थी बच्चन साहब की। पुरानी जीन्स पे आप हुशरेया के साथ, ये गाना फ्रॉम द फिल्म बॉम्बे टू गोवा, एक ऐसी फिल्म जिसमें बच्चन साहब के साथ कोई भी हीरोइन काम नहीं करना चाहती थी। द ओनली हीरोइन हु अग्रीड टू वर्क विद बच्चन साहब इन दिस फिल्म वॉज अरुणा ईरानी जी। इस फिल्म को देखने के बाद सलीम जावेद साहब ने जब लिखी थी जंजीर, उन्होंने कहा कि उनको उनका लंबा घोड़ा मिल गया है। प्यार से बच्चन साहब को लंबा घोड़ा कहते थे दोनों। वेल, जंजीर के लिए बहुत सारे नाम सामने आए, लेकिन द स्क्रिप्ट राइटर्स यानी द एंग्री यंग मेन सलीम एंड जावेद जी ने डिसाइड कर लिया था कि अगर कोई ये फिल्म करेगा, अगर उनका कोई विजय होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ बच्चन साहब होंगे। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री कि जंजीर के बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर हिम। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची, रेडियो मिर्ची के साथ।
2: मिर्ची

0: Mirchi, it's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

रणधीर कपूर जी ने प्रॉमिस किया था सुभाष घई से कि वो कान पकड़ के ऋषि कपूर को ले आएंगे ऑन द सेट्स ऑफ दिस फिल्म। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, ये जो गाना आपने सुना करेक्ट इज फ्रॉम द फिल्म कर्ज। आप ये फिल्म करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे ऋषि कपूर साहब। सुभाष घई ने उस टाइम पे इंडस्ट्री में अपना बहुत बड़ा नाम नहीं बनाया था, वो यू नो इनिशियल स्टेज पे थे, बट वो ये री इनकारनेशन पे, पुनर्जन्म पे फिल्म बनाना चाहते थे। इस सब्जेक्ट ने ऋषि कपूर को इतना इंटरेस्ट नहीं किया था, लेकिन रणधीर कपूर को किया था। एंड सुभाष घई चाहते थे कि उनके पास अवेलेबल तो बहुत सारे ऑप्शंस थे, बच्चन साहब, धर्मेंद्र जी, काका, बट ही वांटेड अ यंगर हीरो टू प्ले द रोल ऑफ मोंटी, और इसलिए ऋषि कपूर को कान पकड़ के रणधीर कपूर ले आए, और फिर तो मूवी वाज सुपर डुपर हिट। इसी फिल्म का गाना आपको सुनाया श्रेया ने, कम राइट बैक।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 98.3 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

सलीम और जावेद की जोड़ी टूटने के बाद ये पहली फिल्म थी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, ये जो गाना आपने सुना इस फ्रॉम द फिल्म बेताब, यानी धर्म पाजी के बेटे सनी देओल की डेब्यू फिल्म। और धर्म पाजी वाज द वन जिन्होंने अपने दोस्त जावेद अख्तर को ब्रेक दिया जब इन दोनों की, सलीम और जावेद की जोड़ी टूट गई। सो दिस बिकेम द फर्स्ट फिल्म जो जावेद अख्तर साहब ने एज एन इंडिपेंडेंट राइटर लिखी थी। वेल, पुरानी जीन्स पे मेरा नाम है श्रेया और इसी फिल्म बेताब का गाना आपके लिए था। अब भाई जल्दी से वापस आओ क्योंकि अगली फिल्म के बारे में भी तो बताना है। सो कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची के साथ।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और अगला जो मैं आपको गाना सुनाने वाली हूँ वो एक ऐसी फिल्म का है जो थ्रिलर फिल्म थी लेकिन इट वाज नोन मोर फॉर इट्स म्यूजिक। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इस फिल्म के लिए अपना फिल्मफेयर अवार्ड भी जीता था इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर। वेल आई एम टॉकिंग अबाउट रफी साहब ने गाया है ये गाना। बताओ बताओ कौन सी फिल्म का है? करेक्ट, मूवी का नाम कर्ज, जिसके लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने बैक्ट फिल्मफेयर अवार्ड। कमिंग अप राइट नेक्स्ट, मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ अब चले हाईवे पे। ऑलराइट, जाने से पहले एक हाईवे हिट जो मैं डेडिकेट करके जाती हूँ आज वाला ना, किसी को डेडिकेट करने का मन नहीं है। ये एक ऐसा गाना है जो हम सबको पसंद है, और कभी कभी तो जब हम अकेले बैठते हैं ना तो इस गाने को सुन रहे होते हैं, स्पेशली इफ़ वी आर रेट्रो फैंस। मुकेश जी की आवाज़ है और गाना कौन सा है ये तो अभी आप सुन ही लोगे। तो ये सबका फेवरेट है, इसीलिए किसी खास बंदे के लिए नहीं, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। ऑन दैट नोट, दिस इज श्रेया साइनिंग ऑफ। फेसबुक और इंस्टा पे माई हैंडल इज आरजे श्रेया विद लव, दैट्स आरजे SHRUYA श्रेया विद लव। तो इस आवाज़ के पीछे का चेहरा देखना हो तो वहाँ आ सकते हो, कुछ वार्तालाप करनी हो वार्तालाप तो वो भी कर सकते हो। गुड नाइट।

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: फिंगर्स क्रॉस्ड कि इस ट्रेंड को अच्छे से फॉलो किया जाए।
2: श्रुति श्रुति
3: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
1: नहीं नहीं, अगर आपको लग रहा है कि मैं वो इंस्टाग्राम पे चल रहे 80s ट्रेंड्स की बात कर रही हूँ, नहीं यार, मैं तो बात कर रही हूँ बुक एडाप्टेशन के ट्रेंड की। बाबू मोशाए, सो बेसिकली जिस हिसाब से हॉलीवुड की फिल्मों को इंडिया में भी
0: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
1: फिंगर्स क्रॉस्ड कि इस ट्रेंड को अच्छे से फॉलो किया जाए।
2: श्रुति श्रुति
3: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
1: नहीं नहीं, अगर आपको लग रहा है कि मैं वो इंस्टाग्राम पे चल रहे 80s ट्रेंड्स की बात कर रही हूँ, नहीं यार, मैं तो बात कर रही हूँ बुक एडाप्टेशन के ट्रेंड की। बाबू मोशाए, सो बेसिकली जिस हिसाब से हॉलीवुड की फिल्मों को इंडिया में भी अगर आपको लग रहा है कि मैं वो इंस्टाग्राम पे चल रहे 80s ट्रेंड्स की बात कर रही हूँ, नहीं यार, मैं तो बात कर रही हूँ बुक एडाप्टेशन के ट्रेंड की। बाबू मोशाए, सो बेसिकली जिस हिसाब से हॉलीवुड की फिल्मों को इंडिया में भी

Mirchi. It's hot. Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: अकड़ी बकड़ी दिक दिकड़ी दिकड़ी दिकड़ी दिका दिकड़ी दिक दिकड़ी दिकड़ी दिकड़ी दिकड़ी दिकड़ी दिकीरो दिकीरो दिकीरो
2: दिकीरो दिकीरो दिकीरो।

रेडियो और गोम रेडियो मिर्ची इट्स ऑल।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। तृप्ति डिमरी और सैफ अली खान को साथ देखना चाहोगे? वेल, ये सुन के ही आई एम क्वाइट एक्साइटेड यार। सो बेसिकली कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से बी टाउन की ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी और उनके हस्बैंड कमल अमरोही के ऊपर ना एक बायोपिक बन रही है। इट इज गोइंग टू बी अ सीरीज जिसमें कमल अमरोही का रोल निभाते नजर आएंगे सैफ अली खान और तृप्ति डिमरी होंगी मीना कुमारी। सो बेसिकली इन दोनों का रिलेशनशिप वॉज अ कॉन्ट्रोवर्शियल शादी। कमल अमरोही 34 के थे, मीना कुमारी 18 की थी जब ये दोनों मिले और उसके एक साल बाद दोनों की शादी भी हो गई। बट सुनने में आता है कि कमल अमरोही वॉज क्वाइट अब्यूजिव विद मीना कुमारी, जिस वजह से 8 साल बाद इनकी शादी टूट भी गई। इंटरेस्टिंग, राइट? वेल, इस सीरीज को डायरेक्ट कर रहे हैं सिद्धार्थ पी मल्होत्रा और उनके तरफ से तो फिलहाल ये स्टेटमेंट आई है कि भाई ये सारी चीजें जो फिलहाल आप सुन रहे हैं कुछ भी ऑफिशियल नहीं है। बट इमेजिन सैफ अली खान एंड तृप्ति डिमरी टुगेदर, अच्छा लगेगा यार। गोलमाल 5 में अक्षय कुमार एंट्री मार रहे हैं, वो भी एक विलन के अवतार में, और ये विलन नॉर्मल सा नहीं होगा। हिज कैरेक्टर इज गोइंग टू हैव ह्यूमर, मैडनेस एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी एज द कोर। वेल, इन तीन चीजों के लिए तो अक्षय कुमार को ऐसे भी हम प्यार करते हैं यार। भाई ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पे तो कमाल नहीं धमाल मचा रही है ये फिल्म। मैं बात कर रही हूँ मिर्जापुर द मूवी की, जो 200 करोड़ क्लब में पहुंच चुकी है। बाकी इस सीरीज के बिग स्क्रीन अडेप्टेशन को जिस हिसाब से ग्लोबली रिसीव किया है ऑडियंस ने, स्पीक्स वॉल्यूम। वरना तो रिसेंटली प्रियदर्शन डायरेक्टोरियल हैवान भी आई, जिसके थ्रू सैफ अली खान और अक्षय कुमार 18 सालों बाद एक साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करते नजर आए। बट मूवी देखने के बाद मेरा मन कर रहा था कि यार अपनी आंखें फोड़ लूं। एनीवे, मिर्ची पे मैं हूं श्रुति आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।